मासो हम आशियार कोई जिराम राहिसो आमार कान्ना कारो देहाई ना बुइसो मुसे राही दुई शोक ताली की परिमाने बुहिर मद्दी कष्ट हमार।